0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा दे
5: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राउंड के लिए रामलला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखे जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं हमारा भी जो आरोपी है या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एस आई टी की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता को विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे
8: Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janta Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate, the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़ कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम CEO अपॉइंट करेंगे। अरे CEO आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS के श्रद्धालु हों।
13: Earlier in today's Suisha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Ram Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
14: So as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
15: I will tell people that please be careful.
14: Okay.
15: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein. Ab main loot macha di hai, loot mat. Aise aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को, एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था, लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे, लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप्ड इन द टेम्पल प्रमाइसेस. That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. It's a human greed of few individuals.
13: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said, filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
16: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
16: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
13: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
18: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
19: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
20: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
21: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
20: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
22: Williams keeps it. First down. Touchdown.
20: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
23: Not every fever is dengue because each illness has its own signature. Dengue causes sudden high fever with severe body aches, pain behind the eyes and can lead to a drop in platelet count. A common viral fever usually causes fever, cough, cold, sore throat and mild body aches and most people recover within a few days. Malaria is characterized by fever with chills, shivering and sweating that often follows a cyclical sort of a pattern. Typhoid typically causes a fever that builds gradually over several days and is often accompanied by stomach pain, loss of appetite, constipation or diarrhea. And this is extremely important. No symptom can confirm dengue on its own. Many infections can look similar in the first few days. Doctors rely on the patient's history, physical examination and the right lab test at the right time to make the diagnosis. A falling platelet count alone does not confirm dengue. Remember that, as platelet levels can decrease in several other illnesses as well. What do you need to know and what does this really mean for you? Do not self-medicate and remember to use mosquito repellents all the time.

0: बारी हो रही है। इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा।
1: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा, जेल में पहुंच जाएगा, उसकी फांसी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जो निर्णय राउंड के लिए रामलला पर विश्वास है, इसलिए उनको सफलता मिली। देखिए जेल में चले गए।
2: क्या कहते हैं महाराज जी, जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है, अब अंतरिम रिपोर्ट भी
1: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे, हमेशा ही बोलेंगे। रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है।
3: कब से चल रहा है? हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता को विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएं।
4: एब्सोल्युटली, वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम फ्रॉम द बीजेपी। द बीजेपी इज नाउ बाबर जनता पार्टी।
5: West Bengal government.
4: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
5: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
4: Absolutely, all of us are discussing that, and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
6: In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir, and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
7: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
8: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़ कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम CEO अपॉइंट करेंगे। अरे CEO आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS के श्रद्धालु हों।
9: Earlier in today, Suesha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Ram Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
10: So, as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
11: I will tell people that please be careful.
10: Okay.
11: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein. Ab main loot macha di hai, loot mat. Aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा दे
5: रामलला क्या जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामलला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं महाराज जी जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी सकते
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एस आई टी की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए
8: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम From the BJP, the BJP is now Babar Janta Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that, and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirtha Kshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirtha Kshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों।
13: Earlier in India Today, Suesha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Rama Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
14: So as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
15: I will tell people that please be careful.
14: Okay.
15: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein, ab main loot macha di hai, loot mat, aise aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को, एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था, लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे, लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस. That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. It's a human greed of few individuals.
13: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said, filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers a turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
16: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
16: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
13: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
18: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
19: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
20: Swing and a foul out of play off to the left.
19: Big 12 Radio.
21: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
19: Talk Sport.
22: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
19: And more. Search sports to find the stations covering your teams.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: CP Plus, ऊपर वाला सब देख रहा है।

0: And we'll start this edition, viewers, with some news just coming in. And this has got to do with the probe in the Ayodhya Chanda Chori matter. The investigation into the alleged Ram Mandir donation theft has entered a very crucial sort of a phase wherein the finances are being looked at. Ayodhya police is seeking the income tax department's assistance to trace the money trail here. Investigators are scrutinizing nearly 50 bank accounts linked to the 8 arrested and their family members, examining transactions dating back to 2022. They are probing whether the alleged siphon funds were routed through relatives, invested in the stock market, parked in mutual funds or fixed income instruments, or used to purchase movable and immovable properties. Police have sought detailed bank statements, KYC records, nominee details, transaction histories to identify hidden assets, unexplained wealth, and any additional beneficiaries. Officials say the financial analysis is going to help eventually to establish the full trail of the alleged embezzlement of donations and determine whether further arrest, asset attachments and additional charges under financial and anti-corruption laws are warranted. Samarth is getting in more details on that story. For more on that, I'm going to go straight across to him. The investigations clearly have found several lapses, which eventually led to a situation that became extremely comfortable, I understand, for those behind this to, in fact, carry out this in a very smooth fashion. This chori to be done in a very smooth fashion, isn't it, Samarth?
1: The police have sought assistance from the income tax department to trace a few of the allegedly siphoned funds, identify hidden assets, and uncover the role of other possible beneficiaries. Police are scrutinizing nearly 50 bank accounts linked to the 8 arrested accused and their family members, and examining transactions dating back to 2022. They are probing whether the accused diverted the stolen money through relatives' accounts, invested in the stock market, converted into immovable properties, or parked in other financial instruments. Sources said police have sought detailed bank accounts, statements, KYC records, nominee details, and transaction histories to match the movement of funds. Investigators analyzing cash deposits, high-value withdrawals, inter-account transfers, and investments made by the accused, as well as their immediate family members, to identify any disassociated assets or unexplained financial transactions. Back to you.
0: Be with us. Coming back to you in a moment from now, Samarth, with the very latest on that story. Meanwhile, let's tell you a little more about the probe and the direction in which it is headed. So what really is under the scanner, viewers? Well, 50 bank accounts are being scrutinized at this point in time. Transactions from 2022 is under review. Accounts of accused and family members is being looked at, not just those of the people who've been arrested, but even their relatives. Detailed money trail mapping, that too is happening as far as the probe here is concerned. Also, statements and KYC records, nominee details, that too is under the subject of investigation. High-value cash deposits, large cash withdrawals, these two are being looked at. Inter-account fund transfers under lens as well. Routing of money by relatives, that too is something which is being looked at very closely. Fixed deposits and other instruments. Movable and immovable property purchases, that too is under the scanner to get an idea about what happened to the money that was donated by the people, by devotees to the mandir, and stolen just so conveniently by a handful of people. Which are the pleas before the Supreme Court, and what do the pleas really indicate? What is the demand? A CBI probe, number one, in Ram Mandir donation theft. That is what is being sought. Forensic audit as well of Ram Mandir Trust finances. Formation of CBI-led SIT, which is a special investigation team, to probe the funds theft. Right now, the Ayodhya police is looking at it. Supreme Court monitored CBI probe. So not just an independent probe by the CBI, but something that is to be monitored by the top court of this country. Stricter control of trust management, transparency in management of temple offerings, that too is something that the plea demands. And the Ram Mandir donation controversy is now headed to the court, as we just mentioned. The apex court is set to hear a batch of petitions seeking an independent probe into the donation theft case, putting the spotlight firmly on the Ayodhya Temple Trust. Well, even before the hearing, the political battle has intensified. The Congress has launched a sharp attack on the centre, questioning the Prime Minister's silence, pointing out that the trust was constituted under the Prime Minister's office's supervision, and asking why the FIR does not name any BJP, VHP or RSS leaders. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Temple, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Amid the escalating controversies here, Mahant Baba Dharamdas has opposed any government control over the Ram Mandir, insisting that the temple's sadhu tradition must be preserved and reminding that saints have led the struggle for the Ram Janmabhoomi movement.
2: ये धार्मिक कार्य शंकराचार्यों पे छोड़ कर दीजिए वो कर दें नहीं किया गया नतीजा ये हुआ कि खुद अयोध्या हारे राम भवन गवर्नर की सारी सीटें हारे 307 से कम होके 240 पे आए लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि वास्तविक अपराधी जो भगवान राम के अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए ऐसी चर्चा है कि दिल्ली दबाव बना रहा है कि वास्तविक अपराधी न पकड़े जाए
3: कांग्रेस के आरोप में तथ्य नहीं है वो एसआईटी योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब अनाउंस की है पूरी इंक्वायरी चल रही है कई लोग उसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं और जो घोटाला हुआ इसका कोई समर्थन नहीं कर सकते है घोटाला बहुत बड़ा सीरियस है गंभीर है राम के नाम पर जिन लोगों ने पैसा दिया था उस पैसे का ब्लैकमेल करना ये बहुत बड़ी गलत बात है और इसकी पूरी जांच होगी और उनको कठोर सजा होगी
4: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है दाग लगा है ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया
5: अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था चंदा चोरी हो रहा था किसके साम्राज्य में किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है पांच छह लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे हम सीईओ अपॉइंट करेंगे अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों
6: लेकिन तो हर कॉर्नर से यह बात आ रही है जो कुछ भी वहाँ जिन लोगों ने किया है बिल्कुल गलत किया है और ऐसी स्थिति आगे न हो इसके लिए तो हर कॉर्नर से आवाज उठ रही है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस तरह का अंजाम होगा
7: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
8: कौन बुलाया था आपको
9: हमको तो इंस्पेक्टर साहब हमारे घर गए कोतवाल साहब और उन्होंने कहा भैया दो मिनट का मामला चले चलिए आ गया
8: किस लिए
9: बयान देना था एसआईटी को
8: अच्छा
9: तो हमने उनको सारा बयान जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था मैंने बताया
8: क्या क्या बताया आपने
9: मैंने बताया 1250 राम शिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया सारी चीजें बताई है हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए बचने न पावे
10: कोई मनमानी हम यहाँ सरकार को चलने नहीं देंगे तो राम जन्मभूमि पर कोई भी सरकारीकरण का करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो दुर्गति के प्राप्त होगा और हम स्वयं उससे लड़ करके हटाएंगे, समझो।
11: तो क्या चाहते हैं?
10: हम चाहते हैं कि जैसे साधु की परंपरा वहाँ पर रहे, साधु खाए दंड बैठक मारे और क्या नाम है उनका व्यवस्था हो, हनुमानगढ़ी के जमीन स्थान बाबा अभिराम दास जी महाराज ने जीवन अपना लगा दिया उस राम जन्मभूमि में, हमने 75 से अभी तक उसी में लड़ रहे हैं।
11: सरकारी नियंत्रण आप नहीं चाहते?
10: अरे सरकारी नियंत्रण कोई कर ही नहीं सकता, करता है तो उसको कठोर मतलब की जवाब दिया जाएगा।
0: And earlier India Today, Suresha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who's become the talk of the town because of his role in the Ram Janmabhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will portray Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad, and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor spoke about the Chadhawa Chori controversy.
12: In the sort of issues that are now being reported when it comes to accountability and transparency in the manner that temples are managed and run, what do you think can be adopted in terms of reforms to help with temple management?
13: So, there are a lot of people saying that I said, agar jo ghar mein hota hai, chor agar koi ghus aata hai, to some smart एलेक्स आर सेइंग अरे चोर में अगर घर वाले ही चोरी कर ले तो वो भी चोर है, इसका मतलब घर वाले चोर हैं, जो सदस्य घर वालों में जिन्होंने घर में चोरी की है वो भी चोर ही हैं, चोर चोरी है। और ये घपले तो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज पे हो सकते हैं ना, जो फ्रॉड्स होते हैं ये फ्रॉड है, इसको तो कोई नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है कोई कि हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, आई एम श्योर मंदिरों में होती है, गिरजे में होती है, मस्जिदों में होती है, किसी भी रिलीजियस प्लेसेस में होती है, बिकॉज जिसके मन में लालच है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट ये बोलना कि आप लालची हैं और हिंदू हैं और आपने अपने ही रामलला के मंदिर में चोरी की, नहीं, आप लालची हैं और चोर हैं, मेरा सिर्फ यही पॉइंट है। उसको और दूसरा नमक मिर्च लगा के कि ये आई हैव नथिंग टू डू विद somebody पुटिंग somebody इन बैक फुट, आई एम श्योर द गवर्नमेंट्स कैन फाइट देयर ओन बैटल्स ब्यूटिफुली, आई फील दिस इज माई ट्रूथ एंड आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट इवन इफ आई वॉज नॉट डूइंग श्री राम भूमि एज ए फिल्म।
0: Let's tell you about the Vietnam boat tragedy. An investigation is ongoing into what caused the boat tragedy that claimed the lives of just so many people, 15 Indian tourists off Vietnam's southern island of Phu Quoc. Vietnamese police have detained the captain of the boat, though. He is under investigation for alleged violations of the waterway transport safety regulations. The bodies of the 15 victims are being repatriated to India. 16 of the Indian survivors of the tragedy have been discharged from the hospital and are returning to India. One remains in a critical condition in a Vietnamese hospital. Remember, the vessel was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. The boat was travelling from Hon Mai Ruth Island to Phu Quoc and Thoi Port, where it overturned about 400 metres into the sea. As per reports, sea conditions were rough. Large waves in the area at the time were being reported. Investigation is now focusing on what led to the tragedy, or whether warnings ignored, was the boat overloaded, were passengers wearing life jackets, and if an emergency distress call was made in time before the boat capsized.

0: The Ram Mandir Chanda Chori case, that's the big story that is we're bringing to you at this moment. The case now, of course, in the Supreme Court, and the apex court has directed the SIT to submit its status report with all the details of the composition of the SIT within 1 week. The top court rejected the demands for independent probe into the alleged donation theft case. For now, the Supreme Court has said that we want a status report from the SIT, which is already probing the embezzlement of donations from the Ram Temple. The court also directed the SIT constituted by the UP government to give its report detailing the progress of the investigation so far, along with the composition of the probe team. The Congress, meanwhile, has launched a sharp attack on the centre, questioning the Prime Minister's silence, pointing out that the trust was constituted under the Prime Minister's office supervision, asking why the FIR does not name any BJP, RSS or VHP leaders. The RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe and urged the Ram Mandir Trust to ensure that such incidents never recur, while safeguarding the faith of millions of devotees.
1: Former Kasevak Santosh Dubey has reached the CO office with some crucial documents in his hands, especially moving forward the investigation in this particular matter. As you see, Santosh Dubey stationed right over here with a lot of documents with him, where he blames and claims that some big names will be put behind the bars if SIT goes through these particular documents. These are some major allegations by Santosh Dubey. SIT via Zoom call interrogated Santosh Dubey as well, as he was giving statements in the media and asked for the some proofs regarding their statement, these particular statements. Santosh Dubey provided some proofs online, and later SIT clearly told him to visit the CO office and provide all the assets, all the documents related to this particular scam to help SIT investigate this matter further. Now Santosh Dubey seems satisfied with the SIT action and also thanks CM Yogi that now the big names of the trust will also be mentioned in the final report of the SIT. Now it's going to be worth seeing whether the final report will have some heavyweights or just the small names will go through this particular investigation. It's going to be worth seeing. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastava for India Today.
2: कौन बुलाया था आपको?
3: हमको तो इंस्पेक्टर साहब हमारे घर गए, कोतवाल साहब, और उन्होंने कहा भैया दो मिनट का मामला, चले चलिए, आ गया।
2: किस लिए बुलाया?
3: बयान देना था एसआईटी को।
2: अच्छा,
3: तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण, जो मेरा धर्म था, मैंने बताया।
2: क्या क्या बताया आपने?
3: मैंने बताया 1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया, सारी चीजें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पावे।
1: विटनेस की तरह भी इस मामले में आपको एसआईटी देख रही है क्या?
4: अब ये तो उनका विषय, वही बता पाएंगे।
1: हाँ।
4: पर मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, मैंने अपनी एफआईआर के लिए कॉपी दी, नहीं दर्ज हुई, तो ट्रस्ट ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक अलग तहरीर दी, उस पर मुकदमा लिख गया, उनका मुकदमा लिखा जा सकता है। वो आजाद भारत के नागरिक हैं, हम गुलाम भारत के नागरिक हैं, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया, हम सच बोल रहे हैं, हमारा नहीं लिखा गया। वो चोरों को बचाने के लिए अपने आप से स्वयं बना रहे हैं, स्वयं चंपत राय ने तहरीर बनाई और कृष्ण मोहन से कहा कि आप जाओ दे, उनका मुकदमा दर्ज हो गया।
1: क्या कुछ है डॉक्यूमेंट्स में, क्या कुछ दिखाने वाले हैं? दिखाएंगे जरा क्या कुछ दिखाने वाले हैं आज। एक देखिए, पूरी एक फाइल संतोष दुबे ने तैयार कर ली है, और ये साक्ष्य, क्योंकि कल एसआईटी से जब बातचीत हुई, एसआईटी ने कहा कि आप साक्ष्य को सीओ ऑफिस में दे दें, हम तक पहुंच जाएंगे। क्या कुछ साक्ष्य है इसमें
4: इतना मसाला है कि चंपत राय को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा।
1: ये क्या चीज है?
4: ये जो हेरा फेरी हुई है तमाम जमीनों की।
1: हाँ।
5: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया। ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे, कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं।
6: इस देश की सर्वोच्च अदालत, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जन जन का भरोसा न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट जन भावनाओं को समझेगा, केस कोई भी हो, कोई किस ढंग से आर्गू हो, पर यह ना भूला जाए कि इसमें 50-60 करोड़ से ज्यादा लोगों की जन भावनाएं आहत हुई हैं, उनको उनका विश्वास लौटे, जांच में दोषी जो ठहराए जाएं या जो दोषी हैं उनको जरूर दोषी करार दिया जाए।
7: वो तो संतुष्टि जताएंगे ही, उनको छुपाना है, मेन लोगों को बचाना है, चंपत राय को बचाना है, मेन जितने जो सरकार से तार जुड़े हैं उनको बचाना है, तो क्या नाम है, वो तो संतुष्टि जताएगी, लेकिन पूरी जनता गांव-गांव में लोग इस जो खाना पूर्ति करी जा रही है इससे संतुष्ट नहीं है, कड़ी कार्रवाई जा रहे हैं क्योंकि आस्था को ठेस पहुंची है।
8: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों, क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों।
0: And let's take you now through what the Supreme Court has said today. Remember, 3 PILs before the Supreme Court calling for not just investigation but also a management, a control over management and the donations to the Ram Mandir. Now, what has the court said? First, the SIT must submit its status report by Monday. The SIT should give details of the report, the investigation done so far, and the composition of the SIT itself. Number three, notice has been issued now to the center, the UP government, as well as the Ram Mandir Kshetra Teerth Trust. The notice to the Mandir Trust has been given despite an argument by the Solicitor General, who had said that, well, there is no need to give notice to the trust at the moment because the government is present. Number five, the Solicitor General had issued concern over the notice to the trust, but that the court has overlooked this, have said that since the petitions are here, the trust should also answer. So now, next Monday is the hearing, and the court will look at the responses filed by the trust, by the state government, and the report of the SIT.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
4: A unique civic initiative from Assam's Tinsukia has sparked a nationwide debate on public hygiene. The municipality has begun to display images of people allegedly caught urinating in public on LED screens. So what is otherwise seen as perhaps a normal in India will now be used to possibly, some would say, rightly shame those who think urinating in public is just a common thing that Indians tend to do. The move, though, has drawn mixed reactions. Some are welcoming the move and saying this name and shame approach is going to act as a strong deterrent against habitual offenders. But some are raising concerns that there is, after all, a certain privacy and dignity of anyone, of individuals here. And how can you put that on the big screens? The campaign has reignited discussion in other cities as well. But there is a call for stricter action. Remember, for years now in India, there has been a call or a plea by the general public that public urinators, spitters, civic violators must have a certain deterrent set against them. Here's what Milind Deora, a Shiv Sena MP, has called for the model's possible implementation in Mumbai.
5: आपने देखा होगा कि आज की न्यूज में असम के तिनसुकिया म्युनिसिपैलिटी ने एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच अपनाया है वहां के स्थानिक नागरिकों में सिविक सेंस इंस्टॉल करने के लिए. They have decided that if any individual who is caught habitually urinating in public, that person's photograph will be shared on a public LED screen to name them and shame them. Jo log ghadi ghadi har bar kachra fekte hain, public areas mein thukte hain, who urinate in public, hamare Mumbai mein jo contractors hain, jo potholes ek prakar se sadakon ko repair karte hain, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाता है जो अधिकारी हैं हु हैव बीन नोटोरियस फॉर फेलिंग टू डू देयर वर्क एट अ वार्ड लेवल. इन माय ओपिनियन सच पीपल्स फोटोज शुड आल्सो बी पब्लिश्ड, शुड आल्सो बी मेड पब्लिक थ्रू पब्लिक एलईडी स्क्रीन्स. अनलेस वी नेम, शेम एंड फाइन पीपल, आई डू नॉट बिलीव दैट वी विल बी एबल टू इंस्टिल सिविक सेंस इन आवर कंट्री.
4: So that's the big initiative. And will it be followed in other cities? Or should I ask, should it be followed in other cities? Moving on, offering prayers at the 136-year-old Bankra Mosque, located inside the Kolkata airport premises near the second runway, that has now been suspended over security concerns. Discussions are intensifying on relocating the structure outside the airport boundary. Now, the mosque is situated, and this is also very interesting, barely about 165 meters from the runway, has long been flagged as a potential obstacle to flight operations. Many say that it's over 100 years old, but also the question then is that there is an emergency procedure, a proposed expansion of the airport second runway, and how did then either this mosque come up or the area around it was being developed as airport. Airport authorities have stopped issuing entry passes to the worshippers. The center and the West Bengal government are in talks to shift the mosque premises to another location. Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says national security must take precedence. Bengal BJP leaders have alleged unrestricted access to the mosque can pose a security risk. It is eventually the airport premises. MLA Saurav Sikdar is claiming worshippers entered the airport premises without a standard airport identity card and that could have posed a risk. State Minister Dilip Ghosh is alleging mosque was deliberately allowed to remain within the runway area, adding its presence has affected operations as well. But TMC has maintained any decision to relocate the mosque should be taken only after consultations with the Muslim community members and the worshippers here.
6: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
7: আমাদের কলকাতা এয়ারপোর্টের উপর এত চাপ বেড়ে গেছে, একটা রানওয়ে দিয়ে কাজ হচ্ছে না, লেট হয়। আর একটা রানওয়ে আইডল পড়ে থাকতো অনেকদিন ধরে, খালি রাজনৈতিক কারণে কিছু লোককে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নামাজ পড়া বা পূজা করা এয়ারপোর্টের মধ্যে সম্ভব নয়। আমরা ফুটপাথ খালি করছি, আমরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম খালি করছি, এয়ারপোর্টও খালি হবে। আমার তো মনে হয় যারা ওখানে আছেন তারা ঠিকঠাক সহযোগিতা করুন, সরে যান বৃহত্তর স্বার্থে। ওইরকম একটা ওখানে থাকতে পারে না কনস্ট্রাকশন। আমার মনে হয় তারাও ব্যাপারটা বুঝেছেন, সরে গেছেন। এভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে এবং বাংলায় হবে।
8: अगर वो मस्जिद नहीं होगा और मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते। एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठा। तो हम लोगों को आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारो राज्य में देखिए कितने एयरपोर्ट, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है।
9: मैं तो इसको खिलाफ, वहाँ के लोग रहते हैं, वो इलाका का नाम है बाखड़ा
10: जी,
9: बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे। ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। वो पैसेंजर का सुरक्षा कोई नहीं, लोग टच नहीं किया, क्योंकि लोगों का धर्म विश्वास के साथ ये जुड़ा हुआ है।
4: And I now take you back to 2024. The Central Bureau of Investigation has filed a closure report in the 2024 old Rajinder Nagar coaching center flooding case. If you remember, the basement of the coaching center that was flooded and led to casualties too. The probe agency has given a clean chit to two senior MCD officials, submitting that it found no evidence to prosecute civic officials for criminal negligence. Then Superintendent Engineer Ajay Nagpal and then Deputy Commissioner Kumar Abhishek have been given a clean chit. But at the same time, MCD has found dereliction of duty and negligence on the part of three MCD building department officials. MCD already initiating departmental proceedings against the said officials on the recommendation of the CBI, and that presently continues. Remember, India Today had uncovered a serious lapse in the basement library of Rao's IS study circle in Delhi's old Rajinder Nagar. Three students, Shreya Yadav, Tanya Soni and Nevin Delvin, had drowned in the flooded basement of the coaching center.
11: Today, the team of India Today has reached on ground zero to verify the facts and to just to get a look if at all things have changed over the last two and a half years. If I could show you in the visuals over here, this is another library. Yes, the library that was in the basement has now been shifted to the floors above. But if I could just show you the kind of condition in which these libraries are actually operating, this is very, very shocking. Yet again, over here, it is absolutely clear that there could be no fire NOC that could have been given to a place where students come to study, which has an entry and exit of less than probably 2 feet as well. And if at all any untoward incident that might happen, for that matter, if at all there is a small spark that happens in these meters that you are seeing over here, where is the exit? From where will the students actually manage to go out? So these are the kind of libraries that have been built over here, where again there doesn't seem to be any sort of norms that are being followed over here. The larger question that still remains, that how these libraries are actually being allowed to operate in this entire region when the CBI is of the opinion that the MCD is not responsible for any untoward situation that happens over here. Senior officers of the MCD are not responsible. You can see that how congested are these places over here. With Vigilance Ritesh Mishra, Nishant Singh for India Today.
10: मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हूं और तकरीबन एक साल पहले इसी इलाके में एक हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो छात्र हैं वो तैयारियां करते हैं। लाइब्रेरी है, जरा देखिए कितनी पतली संकरीय लाइब्रेरी है जिसमें अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ लकड़ी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अलमीरा है वो सब कुछ लकड़ी का है। एंट्री एग्जिट गेट एक ही है यहाँ पर, ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। बच्चे तो बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, पैसे देते हैं, जहां तैयारी करने को मिलेगा वहां पर तैयारी करेंगे। जरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरामैन संजय के जरिए। संजय आप इधर आइए। और हमारी जो एंट्री हुई है वो इस जगह से हुई है, इस जगह से। ये एक पतला सा रास्ता है, यहां से हम आते हैं और इस तरीके से हम अंदर की तरफ आते हैं। तो एग्जिट एंट्री गेट यहां पर एक ही है और कुल मिलाकर 37 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं जिसमें बच्चे बच्चियां भी हैं। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अमूमन जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही इस तरह की चीजें वो सामने आती हैं। यहां पर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं।
12: किसने कहा?
10: रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। रियलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। मैंने कहा
12: आपको ने?
10: मैं पत्रकार हूँ
12: तो हमें पत्रकार की आवश्यकता नहीं है।
10: अच्छा
12: जी, नहीं हमें पत्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार अपने पास रखिए, जिनको आवश्यकता है वो रखिए।
13: मैं ये पूछ रहा हूँ किससे परमिशन लेके आप अंदर आए?
10: रियलिटी
13: अभी रियलिटी चेक करने की परमिशन नहीं किसी ने। आपने पढ़ाई चल रही यहाँ पे?
10: पढ़ाई कराई।
13: चलो हो गया, हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। चलो
10: रिपोर्टिंग हो गई,
13: बहुत रिपोर्टिंग हो गई। चलो चलो
10: यहाँ पर कैमरामैन संजय दिखाएंगे। ये लाइब्रेरी है और ये दिखाना बहुत जरूरी है, दिल्ली सरकार भी देखे। रिवोल्यूशनरी लाइब्रेरी है और जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की कितनी पंतरी और संकली गली है यहाँ पर। और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। एग्जिट एंट्री गेट ये है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बच्चे जो पढ़ाई करते हैं कुछ इस तरीके से हम नीचे की तरफ आपको जाकर दिखाते हैं। और जब हमने रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैमरे के सामने हाथ मारा जा रहा है।
3: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे टेलीविजन। India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: Happened with you कि आप एक कमरे में घुसे हैं पर आप भूल गए आप क्या काम करने जा रहे थे आपने अपना फोन खोला पर समझ में नहीं आया क्यों खोला था एंड कभी कभी इतना भी कि रात को सोते सोते बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है ऑल दीज आर साइंस ऑफ मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज बहुत सालों तक ये कहा जा रहा था कि ऐसा ही चलेगा वीमेन हैव टू जस्ट राइड द वेव पर एक थेरेपी थी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसके बारे में बहुत कहा गया कैंसर हो सकता है उससे बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं लेकिन समथिंग चेंज्ड इन द फेब्रुअरी ऑफ 2026
5: मेनोपॉजल हिस्ट्री क्या है वो तो हमारी 35 पे हिस्टेरेक्टमी हो गई थी ब्लीडिंग हुई तो मैंने कहा उसके बाद तो हार्मोन लिए होंगे नहीं डॉक्टर ने कहा हार्मोन नहीं लेना ये हमने बात ही नहीं हुई इस बारे में कोई हम वापस ही नहीं गए
4: कैल्शियम खाने को बोल दिया जाता है
5: कैल्शियम खाने बोल दिया
4: कितने कम लोगों को पता है इसके बारे में आई कैन रिमेंबर एट टॉप ऑफ माई हेड सो मेनी वुमेन इन माई फैमिली हैव गॉट इट डन बट उनसे अगर पूछो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में तो उनको नहीं पता होगा उन्होंने पूछा भी नहीं होगा
5: डॉक्टर भी पहले डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते थे या नहीं करते थे बट ये हमारे लिए अनकॉमन नहीं है
4: so, आप ये दूसरे लखनऊ के डॉक्टर हैं जो बहुत पाथ ब्रेकिंग काम कर रहे हैं दिस अगेन गोज टू प्रूव दैट ऑल यूपी वालास आर मेंट टू डू समथिंग इन HRT के बारे में बहुत बातचीत हो रही है बट हाउ एक्सपेंसिव इज इट दोज हु आर ऑन GLP-1 क्या HRT उनके लिए है और अगर आप एक मेल हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए भी है बिकॉज डिड यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेनोपॉज
5: द टेस्टोस्टेरोन लेवल एक्चुअली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एट 30
4: इज इट ट्रू दैट अ लॉट ऑफ मेन इन साउथ दिल्ली आर इंजेक्टिंग देमसेल्व्स विद टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स टू फील यंग अगेन
5: सो आई कांट सी अ लॉट ऑफ Haan. But certainly some are doing that.
4: Over abuse se kya side effects ho sakte hain?
5: I have people undergoing divorces. Well known people who underwent a divorce for this reason.
4: How a man in their 40 or a woman in their 40 is watching this, how do they know ki ye regular fatigue hai? Ki bas it's just been a tough day or there is something clinically wrong? कितना कुछ झेल रही हैं बताती नहीं उसके बारे में बोलती नहीं उसके बारे में दे डोंट टॉक अबाउट यू नो व्हेन यू हिट प्यूबर्टी दे डोंट टॉक अबाउट इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डोंट टॉक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग नोबडी टेल्स यू हाउ हार्ड इट इज एंड दे ऑब्वियसली डू नॉट टॉक अबाउट मेनोपॉज एज वेल
5: What we are talking about today, men need to be sensitized to that.
4: Yes.
5: Involvement of men and understanding of men about their partners' issues around menopause is very important because it will improve the couple's quality of life, not just the ladies.

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
3: Many people have been arrested in it. And the घोटाला हुआ इसका कोई समर्थन नहीं कर सकते हैं. घोटाला बहुत बड़ा सीरियस है, गंभीर है. राम के नाम पर जिन लोगों ने पैसा दिया था, उस पैसे का ब्लैकमेल करना ये बहुत बड़ी गलत बात है. और इसकी पूरी जांच होगी और उनको कठोर सजा होगी.
4: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था. क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है? पांच छह लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे. अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता. और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों.

0: a fragrance that lasts longer than 10 hours. So I can be myself a little more. French Perfumes by Chobani. For him and her.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey! Life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: College should open doors, not bury you in debt. At WGU, we keep tuition low. One flat rate per term. Earn a job-ready degree and spend less. This is education made affordable. Learn more at WGU.edu.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: अल्लाह हुआ इसका कोई समर्थन नहीं कर सकते घोटाला बहुत बड़ा सीरियस है गंभीर है राम के नाम पर जिन लोगों ने पैसा दिया था उस पैसे का ब्लैकमेल करना ये बहुत बड़ी गलत बात है और इसकी पूरी जांच होगी और उनको कठोर सजा होगी
5: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत बात ये है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था चंदा चोरी हो रहा था किसके साम्राज्य में किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है पांच छह लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे हम सीईओ अपॉइंट करेंगे अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों

0: A film, a controversy, and a political storm. Satluj has become Punjab's biggest flashpoint ahead of the state elections. The movie, based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the state, is being screened at gurdwaras across the state. The Shiromani Gurdwara Prabandh Committee, which manages Sikh places of worship, is staging protests against the ban. The Shiromani Akali Dal has come out in support of the movie. Akali Dal President Sukhbir Singh Badal has announced that the party will organize public screenings of the movie across every village and corner of Punjab.
1: अगर तो कोई तथ्यों से बाहर जाके बात कर रहा है, तो हिस्ट्री जाने का तो सबको अधिकार है कि पता होना चाहिए. तो लोग देखना चाहते हैं, सरकार रोकना चाहती है, तो क्यों ना देख पाए लोग. तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा इनडायरेक्ट तरीके से सेंसरशिप देश में लगे.
0: The Aam Aadmi Party, the ruling party in the state, has targeted the BJP and the Akali Dal.
2: Bibi Khalra ji da bayan is pakkhon bada ahem hai. Oh kehnde ki main Badal sahab kole gayi ki Badal sahab hun sarkar aa gayi, aapa Khalra ji nu labban da yatan kariye. To kehnde Badal sahab eh kehnde ki Biba ji jehdi koi chairman nahi chahidi hai, oh dass dio te apne bacche paalo, ede vichon ki lena hun. Ede bawajood
0: the Congress has denounced the restrictions. Meanwhile, Union Minister Ravneet Singh Bittu has issued a direct challenge to the film's makers. He has asked them to provide proof of the 25,000 missing claim. The Union Minister said that filmmakers cannot invoke creative freedom to portray disputed figures as established historical facts.
3: जैसे खालरा साहब के धर्मपत्नी ने ये डिमांड की है, मैं भी डिमांड करता हूँ. बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ये कमीशन बनना चाहिए, सच एक बार सामने आ जाना चाहिए. और 25,000 का नंबर बिल्कुल नंबर फज किया है, गलत है. 25,000 का नंबर मैं फिर नेशनल और इंटरनेशनल चैनल के सामने मैं इसका चैलेंज करता हूं और आपके सामने आके माफी मांगूंगा अगर कोई 25,000 का फिगर सामने ले आए.
0: Punjab endured unimaginable pain and suffering during the 80s and the early 90s, a period when separatists backed by Pakistan unleashed terror and the police launched an operation to crush terrorism. The ban on the movie, which refers to that dark period, has triggered a fresh debate on free speech and human rights. Bureau Report, India Today.
4: And joining me now is Union Minister Ravneet Singh Bittu. Mr. Bittu, really appreciate your time here on India Today. You challenged the makers of Satluj to produce documentary evidence or official records for the 25,000 missing or illegally cremated bodies or issue a public clarification. Why do you believe this crosses from creative freedom into distortion of history that requires correction?
5: Maria ji, मैं बिगनिंग विद टू थ्री पॉइंट्स. क्योंकि जो फिल्म है, पिक्चर है, उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ना ही आज आप किसी चीज को रोक सकते हैं ओवर द टॉप ओटीटी पे जाके, बिल्कुल ही नहीं. ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई पाबंदी हो ही नहीं सकती, सेंसरशिप हो ही नहीं सकती, आप जानते हैं. लेकिन मेरा सिर्फ डिबेट जो है वो इतना है, खालरा जी जो है बिल्कुल उनको मारा गया है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, वही पीड़ा मेरी है. हम सब लोगों ने ये चीजें अपनी फैमिलीज में लगातार 80 से 93 तक हमने देखी हैं. पर 25,000 नंबर, एक तो मूवी होती है फॉर एंटरटेनमेंट, एक कोई सीरियल चलता है फॉर एंटरटेनमेंट. ये जो पिक्चर है, जब आप कहते हो किसी का बायोपिक बनाया है और रियलिटी पे है, तो उसमें फिर आप नंबर या चीजें फज नहीं कर सकते. अब मैं आपको बड़ी विनम्र बेनती से और सारों को, बीच में हनी त्रेहन साहब को भी मेरी एक ही गुजर, भाई 25,000 नंबर कहां से आया, किसने दिया और कहां पे ये नंबर है? आज मिसेज खालड़ा में वो जो रिस्पेक्टेड, क्योंकि उन्होंने झेला, आज उन्हें ट्वीट किया है और मीडिया के सामने रखा है भी, इसके ऊपर जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उसके ऊपर एक कमीशन बने, उन्होंने आज अकाल तख्त साहब के एसजीपीसी को अपील की है
4: जी।
5: अगर उन्होंने की है, इट मींस कोई नंबर नहीं है, किसी का पता नहीं है, खुद उन्होंने आज ये, और मैंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने, भाई वो कमीशन चाहे अकाल तख्त साहब के जथेदार बनाए, क्योंकि हमारे तो सारा सब कुछ वही है, वो बनाए, एसजीपीसी बनाए, कोई बनाए, बिल्कुल जो खालड़ा जी, मिसेज खालड़ा कह रहे हैं, हम भी विक्टिम हैं, ये बनना चाहिए और इसके ऊपर पूरी किस तरीके से वो, इसकी बनतर क्या होगी, किस तरीके से ये होगा कमीशन, दूसरी बात, एक तो ये हमारी बिल्कुल हम एक दूसरे के इस चीज के साथ बराबर है, दूसरी बात जो वो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो कुछ किया, देखो एक तरफ पंजाब पुलिस दिखाई है, एक तरफ वो सीबीआई दिखाई है, वो भी तो हिंदुस्तान के ऑफिसर हैं, वो भी भारत की एजेंसी है जिसने उनको सजा दी, और आज चाहे वो एसएसपी था, वो ट्रेन के नीचे आके वो अपने सुसाइड कर गए, जो अजीत सिंह संधू दिखाए गए हैं, नाम उनका कुछ भी सगू जा पता नहीं क्या कुछ भी रखा है, और दूसरी उसमें मारे गलत क्या दिखाया, जो मेरे ग्रैंडफादर जो सरदार बेअंत सिंह जी थे, जब वो 92 फरवरी में सीएम बने और उनका असैसिनेशन हो गया हमारे 1995 ऑफ अक्टूबर 31 को उनका सेक्रेटरिएट में ब्लास्ट हुआ और वो शहादत पा गए, और खालड़ा साहब को उठाया गया है 6 सितंबर, वो तो अक्टूबर में चले गए, अगस्त 31, मैं ये गलत कह गया, सरदार बेअंत सिंह जी की शहादत करवानी हो गई 31 अगस्त, अगस्त में वो सेक्रेटरिएट के सामने ब्लास्ट हो गया, और जो सितंबर ऑफ 6 उस तरीक को खालड़ा साहब को उठाया गया और अक्टूबर में उनकी किलिंग की गई, और अगर अक्टूबर में हुई तो ये उसमें दिखा रहे हैं भी बेअंत सिंह जो सीएम है उस टाइम के, वो केपीएस गिल्स को कह रहे हैं भी खालड़ा साहब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये कौन है, नेशनल लेवल पे न्यूज जा रही है, तो डीजीपी जो केपीएस गिल दिखाए गए वो कहते हैं मैं इसे देख लूंगा, अरे भाई वो तो 31 को चले गए और ये 6 अगले महीने की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में कौन चीफ मिनिस्टर था उस टाइम, उसके बारे में उस टाइम
4: आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं बिट्टू जी, आपने आपका कहना है कि यू हैव नो इश्यूज विद जसवंत सिंह खालड़ा हिमसेल्फ, बट लेकिन आपने दिलजीत दोसांझ को इम्पोस्टर कहा है, हु वाज मिसलीडिंग पंजाब फ्रॉम लॉस एंजलिस, एंड यू हैव सजेस्टेड पॉसिबल खालिस्तानी इन्फ्लुएंस, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉम्प्टेड यू टू मेक दीज रिमार्क्स अगेंस्ट द एक्टर?
5: देखो मारे आई थिंक 2 years back एक पिक्चर आई जिसका नाम चमकीला, एक सिंगर था चमकीला, नाम लेने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उतने इससे गंदा कोई लिख नहीं सकता, उससे गंदा कोई गा नहीं सकता, उसके बारे में पिक्चर बनाई, प्रणीता जो है उसमें वो हीरोइन थी, उसका जो हस्बैंड वाइफ जो रोल था चमकीला का दिलजीत ने किया, वो उस टाइम जो गा रहे थे उनको भी टेररिस्टों ने स्टेज पे गाते हुए उनका कत्ल किया, क्योंकि वो उनकी मर्जी का नहीं गा रहे थे, और वोर्स को भी फैमिली कोई लेने नहीं आई, ओन नहीं किया, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी, उसको बिल्कुल उस पिक्चर में ये नहीं दिखाया गया भी टेररिस्टों ने मारा था चमकीले में, उसको ग्लोरीफाई किया गया, एक तरफ तो वो गंदा सिंगर, आज चाहे उसे कुछ भी कहें, उस टाइम कोई अपने घर में उसको सुनता नहीं था, इस तरीके से वो गाता था। तो चमकीला नाम के मूवी, उसमें पैसे बना लिए, वाह हो गई। अब वही आदमी उसी टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं कहता हूं गवर्नमेंट के ऊपर इसमें जो कुछ हुआ 80s में, वो इंदिरा गांधी जी ने, आज फुलका साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार किया, जो हमारे दरबार साहब के ऊपर उसको ढेरी किया, और उसके बाद राजीव गांधी जी ने बड़ा पेड़ हिलता है ये बात कही, और किसी हिंदू और सिख की बात नहीं थी दिल्ली में, फुलका साहब ने आज कहा है। और मैं भी कहता हूं भी उस टाइम, क्योंकि आज तो सजा भी हो गई केसों में, उस टाइम जिस सिखों को टायर जला के जलाया गया कांग्रेस के राज में, वो कांग्रेस ही थे, वो कोई हिंदू नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे। आज ही खालड़ा साहब ने कहा भी, मेरे को बचाने वाला भी हिंदू था, मुझे बचाने वाले भी मुस्लिम थे। तो वो किसी भी अपने जो फुलका साहब ने कहा है, और इसमें जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं भी, बीजेपी का और गवर्नमेंट का इसको आरोप लगाया जा रहा है भी बंद की है, बिल्कुल इसी इस चीज को मैं क्यों ना डिनाई करूं, जो बात है ही नहीं है, इसको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। और
4: तो क्या बीजेपी में, बिट्टू जी, क्या बीजेपी में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो सीनियर बीजेपी लीडर है इकबाल सिंह लालपुरा, ही हैज कॉशनड अगेंस्ट एस्केलेटिंग द इशू, लेकिन पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट जो है केवल सिंह ढिल्लों, ही हैज टेकन अ डिफरेंट स्टांस। Is there some confusion within the party on Satluj? And how do you respond to this disagreement?
5: देखो, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, जो हमारे केवल सिंह ढिल्लों इज अ प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उन्होंने एक लेटर लिखा है आईबी मिनिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, भाई ये यहां पे हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, भाई ये पिक्चर अब जी नेटवर्क है, मैं जाना नहीं चाहता उसमें ज्यादा, जी जो फाइव है उन्होंने ये पिक्चर डाली, और दिलजीत ने पहले ही अनाउंस किया भी जल्दी से जल्दी आप इसे अपलोड कर लीजिए, अपलोड करने के बाद ये पिक्चर है जो हटा दी जाएगी, उन्होंने खुद कहा भी ये मंडे को पिक्चर उतार दी जाएगी, ही सेड ऑन फ्राइडे और सैटरडे। तो ये जी वालों को सामने आके बात करनी चाहिए इसमें बीजेपी के। अब जहां लालपुरा साहब की बात की, लालपुरा साहब बहुत सीनियर आदमी है, ही वाज एसपी पोस्टेड इन अमृतसर जब ये पूरा पीक पे था, और भिंडरांवाला जी उस टाइम थे, तो एक एल्डरली उन्होंने ये कहा है भी इस चीज को, जो उन्होंने भी कहा भी 25,000 नंबर है जो, ये कहां से आया, आप दो देश का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी वेबसाइट पे जाइए और नंबर चेक कीजिए कितने हैं, क्योंकि हर जो डेथ हुई है, जो पुलिस एनकाउंटर में जहां मारा गया है, उसे 2 लाख रुपया इलेक्शन ने जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा दिया गया है, और उसका नंबर उसके ऊपर है, तो 25,000 नंबर कहां से आ गया, ऑब्जेक्शन नंबर वन, उसका आप वहां से उठा सकते हैं। दूसरी, जो सीएम है उसमें दिखाए गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर उस टाइम नहीं थे, उसमें टाइम और कांग्रेस के हरचरण सिंह ब्राड साहब सीएम थे, यहां नरसिम्हा राव जी थे, ये कांग्रेस का सारा, बीजेपी ने इसमें क्या छुपाना है जी, बीजेपी क्यों इसको रोक,
4: लेकिन ये भी कहा जा सकता है ये क्रिएटिव फ्रीडम है, ये क्रिएटिव फ्रीडम के स्पेस में आएगा, जो आप बोल रहे हैं कि 25,000, ये जो आप नंबर्स जिसका सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब ये हो सकता है कि क्रिएटिव फ्रीडम है, ये एक मूवी है, उस पर फैक्ट्स से इतना ज्यादा क्यों रिलेट किया जाए।
5: तो फिर इस पिक्चर को क्यों 4 साल पहले इतना डिबेट था, सेंसर बोर्ड ने क्यों पास नहीं किया था, अगर वो बात पे आए तो यही प्रॉब्लम्स थी ना उस टाइम में, अगर इस चीजों को ठीक कर लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। खालड़ा साहब की तो सच्चाई है, और जो पंजाब में ये हुआ ये भी सबको, अगर ये थोड़े से फिगर जो है इस बात में क्या जीत थी भाई, हम नंबर नहीं ठीक करेंगे, और उस टाइम जो एग्जैक्ट जो सीएम था उसे दिखा देते, और बिल्कुल जो इसमें राजुआ जो ये दिलावर सिंह है, ह्यूमन बम दिखाया गया है कार में आके, वो बिल्कुल कोई खालड़ा साहब के जहां उस केस से उसका रिश्ता ही नहीं है, ये दिखाया गया भी वहां पे गोलियां चली और मारे गए, उसके मन में आ गया मैं ह्यूमन बम बनूं, ये चीजें टोटल गलत दिखाई गई हैं। अगर थोड़ी ठीक करके दिखाते तो ये बात भी आज जो उठी है, क्योंकि ये पीड़ा पंजाब के लोगों की है, हिंदू सिख की पीड़ा नहीं, आप सिखों की। आज मैं एक बड़ी बात करना जा रहा हूं, मेरी इसमें या लालपुरा साहब या बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। आज हमें ये सिख टेररिस्ट, इनको हम ग्लोरीफाई करेंगे? हम क्यों ना बात इलेक्शन कमीशनर गिल साहब की करेंगे? क्यों ना बात हम अपने मनमोहन सिंह जी की बात करें? क्यों ना मनटेक सिंह आलूवालिया की बात करें? क्यों ना आज हमारे वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं बंगा साहब की बात करें? क्यों ना छतवाल साहब की बात करें? हम इन लोगों की बात करेंगे आज? ये सिखों को दिखाएंगे भी ये थे हमारे पंजाब में जिन्होंने आग लगाई? ये वो लोग हैं पंजवड़ जैसे, जो पंजाब को आज पिछले दिनों उनका पाकिस्तान में पता लगा है, अभी मारे गए। नहीं, सारा नार्को टेररिज्म, जितना ड्रग्स आज हमारी यंगस्टर्स को पंजाब में भेज रहा था, वो आदमी अकेला भेज रहा था। Okay. कल को उनके ऊपर ये पिक्चरें बनाएंगे।
4: Since you have
5: फिर हम क्या करेंगे पंजाब में?
4: Since you have said that you will explore all legal and constitutional remedies to ensure that historical facts are not misrepresented, what exactly are these remedies? Are you approaching the courts? What exactly are you going to do?
5: देखो, पहले तो अब पुरानी बात तो वो चलो है, लेकिन कल हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार जो हैं गड़गज साहब, वो कल को जिस दरिया की बात की जा रही है हरी के, जिसमें बॉडी उन्होंने कहा था फेंकी गई थी, वहां पे वो 14th को कल मतलब अरदास करने जा रहे हैं, जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी सी। पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात रखना चाहता हूं, जथेदार साहब सबके हैं, और जथेदार वहां हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, मुसलमान भी, ईसाई भी, इसीलिए दरबार साहब गोल्डन टेंपल में 4 दरवाजे रखे गए हैं। उसके लिए जथेदार साहब, जो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उनको हाथ जोड़ के बेनती है, जो भी पुलिस वाले मारे गए, जो टेररिस्ट मारे गए, जो हिंदू मारे गए, जो सिख मारे गए, जो अमन पसंद लोग मारे गए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वीसी थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे आईपीएस ऑफिसर थे, तो आईएएस ऑफिसर थे, चाहे आम बेचारे लेबर के लोग थे, जथेदार साहब सबकी, जितने भी पंजाबी जान गई है उनके लिए अरदास करें, क्योंकि वो उनकी तरफ सब देखते हैं और वो सबके हैं। किसी की उसमें ये नहीं होना चाहिए फिर बात कोई ऐसी उठेगी भी अकेले इस वर्ग के लिए अरदास की गई है, सबके लिए उन्हें अरदास करनी चाहिए।
4: ठीक है
5: मारे अश्लील, ये एक मैं रखना चाहूंगा, पंजाब हमारा गुरुओं को मानने वाला है, इसमें इस पिक्चर की बात नहीं है। पंजाब गुरुओं ने कभी भी ये सिखाया ही नहीं, हमारी बानी में मनुखता इंसानियत की बात की है, और उसमें ये कहा है, एक बहुत बड़े सिंगर ने एक वर्ड कहे थे, मैं पंजाबी में कहूंगा, गोविंद, दो रंग गोविंद दे, दो रंग गोविंद दे, एक होला एक होली, दोनों रंग गोविंद दे, होला होला महला होता है, होला है आनंदपुर साहब जहां खालसा पैदा हुआ, आनंद वहां होला मनाया, होला महला होता है, होला है आनंदपुर दा, मथुरा दी होली है, दोनों रंग गोविंद दे। ये जो मानवता है, मनुखता है, ये इसके लिए सब एक है, और हमारा प्रयास इन चीजों में नहीं है, कोई गलत समझे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक जैसे जंगल में आग लगने से पहले जब आग लग जाती है ना, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके अपना तुपका तुपका डालती है, भी मैं भी अपनी इसमें उहूती डाल लूं, मैं भी अपना फर्ज अदा कर लूं।
4: Okay.
5: हमने वो खून देखा है, मेरा सिर्फ किसे कोई गलत समझे, मैं किसी की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि वो जंगल में आग ना लगे, वो सिर्फ पानी का एक तुक्का गिरने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में। मैंने पता भी किया खालरा साहब के धर्म पत्नी, वो अभी बाहर हैं, जब भी वो आएंगे मैं उनके पास जाऊंगा, उनके परिवार के साथ जाऊंगा, भी हम लोगों ने चाहे खालरा साहब कोई टेररिस्ट थे, खालरा साहब को तो एक एक मसीहा थे जो यहां पे मारिया। मैं एक बात, मुझे दर्द क्यों होता है, उसमें मेरे ग्रैंडफादर को दिखाया, और ये भाई जो
3: खालरा साहब थे, जसवंत सिंह खालरा मारिया, वो 92 से पहले लंदन इंग्लैंड में रहते थे, चले गए थे क्योंकि गवर्नरी रूज था और कांग्रेस की सरकार थी, यहां वहां गवर्नर थे। और जब 92 में मेरे ग्रैंडफादर की लोगों की सरकार बनी तो जसवंत सिंह खालरा जी वापस पंजाब आए, उन्होंने फिर ये काम शुरू किया। और मेरे दादाजी के रहते किसी ने उनको कभी पुलिस केस नहीं किया, कभी पुलिस में बुलाया नहीं पुलिस स्टेशन में। और मेरे ग्रैंडफादर ने जब आए, जो गवर्नरी रूल में बिल्कुल लोगों के पास ताकत नहीं थी, उन्होंने पंचायत इलेक्शन कराई 12 साल के बाद, काउंसलर इलेक्शन कराई, लोगों की ताकत लोगों के हाथ दी, उसके बाद अमन शांति आ गई, उसके बाद पंजाब ठीक है। ये जो, और जब मेरे दादाजी चले गए उसके बाद फिर खालरा साहब को मार दिया गया। उस टाइम उन्होंने बहुत गलत दिखाया। मेरी अगर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कल को जो मेरी कल के अलगी जनरेशन आएंगी उनके ऊपर ये ब्लॉट रह जाएगा इस तरीके से, ये कैसे हो जाएगा। अभी दलजीत दोसांझ, यहाँ पे एक एक मैं इशू रख के बंद करूंगा। आपने एक केवल ढिल्लों की लेटर का जवाब, उन्होंने लिखा भी ये पिक्चर क्यों बंद की, उन्होंने मिनिस्टर साहब को लिखा और उसी टाइम एक इंक्वायरी कमेटी बनी इसे देखने के लिए, 4 मेंबर भी, ये पिक्चर किस कैसे आई और कैसे चली गई। ये बीजेपी के कहने पे, बीजेपी प्रेसिडेंट पंजाब के कहने पे वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो पता चल जाएगा। और दूसरी बात, मैं इसमें आपस में भाईचारा संभावना की आगे बात करूंगा, मैं कभी भी इस लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा। आपके चैनल से सबसे ऐसी पिक्चरें जरूर बने, बननी चाहिए, सच्चाई सब पता चलनी चाहिए, लेकिन उसमें सच्चाई तो दिखाओ। और दलजीत दोसांझ की एक बात सुन लीजिए आखिरी, क्योंकि ये दर्द है। दलजीत दोसांझ पिछले दिनों में वो एक बड़े कॉन्सर्ट कर रहा था अपने, उसने उसमें बात आ गई भी बहुत बड़ा एक देश का, जो अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके उन्होंने चरण स्पर्श कर दिए करोड़पति शो में, तो उसको लेके वहां के सिख बाहर नाराज हो गए और उनके कॉन्सर्ट्स में खालिस्तान के झंडे और फ्लैग लेके आ गए भी, जिन्होंने सिखों को मारा है उनको, सिखों को जिसने मारा है उस अमिताभ बच्चन के आप चरण पैर छू रहे हो, उसका गुस्सा। और दलजीत ने ये कह दिया भी इनको बाहर फेंको, अपनी जो उसके सिक्योरिटी के लोग थे उनको कह दिया थ्रो देम आउट, दो जगह। अब वो इन चीजों में फंस गया क्योंकि वो बाहर रहता है, एलए रहता है, उसने अमिताभ बच्चन के पैरी हाथ लगा दिए और खालिस्तानियों को बाहर करने का कह दिया। अब उसने जल्दबाजी में ये पिक्चर, लोगों की पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा, उसने अपने बचाव में पिक्चर डाल के अपने आप को बचाने की बात की है, लेकिन हम पंजाब और पंजाबियों के बचाने की बात कर रहे हैं आपके सामने। और वो कैसे रहेंगे मारिया, ये तो पिक्चर चले जाएगी 10 दिन हफ्ता चलती है बाद नहीं बात आ जाएगी, और मीडिया में नहीं बात आ जाएगी, भूल जाएंगे लोग, लेकिन हमारे जख्म है, जो खालड़ा साहब के जख्म है, वो लोग हम कभी भूलेंगे नहीं और वो दोबारा स्थिति पैदा नहीं होने देंगे।
4: All right. As the grandson of former Chief Minister Beyant Singh, who was assassinated during the turbulent period, Ramneet Bittu, really appreciate your time. I understand that this is very, very personal for you because your family is actually, understanding how difficult those period, that very, very tough period in Punjab was. Appreciate your time. Thank you for speaking to us.
6: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

0: दूसरी देश में करा लीजिए.
1: The controversy has left devotees in shock.
2: चारों तरफ से ये भ्रष्टाचारी लिप्त है और इसके साथ पूरी समिति ही दोषी है, क्यों जो सहयोग देता है. अगर ये समिति कहती है कि हम चोर नहीं है तो भाई जो साथ देगा वो तो चोर होगा ही.
1: The probe committee had cross-referenced audit records from 2023-2024 and 2024-2025 with actual documents. Any action will be decided based on orders from the courts.
3: The Butati Dham temple in Rajasthan's Nagaur witnesses an influx of thousands of followers on a daily basis. However, serious accusations of financial impropriety and fraud have caused a sense of betrayal amongst several of them. Whether the recommendations made by the investigation committee, including that of freezing of records, of registering an FIR and police investigations into the matter, apart from suspension of the current temple committee and handing over of the temple affairs to a gazetted officer, are accepted or not, only time can tell. With camera person Manish Devankar Vadhavan in Nagaur for India Today.
4: Okay, let's turn from temple scams to another of our controversies. Remember the Ladki Bahin Yojana? The Yojana under which the Maharashtra government in 2024 July decided to give 1500 rupees to women beneficiaries. It was a trump card that led to the BJP-led NDA winning big in Maharashtra. But now, 2 years later, the scheme has come under controversy. Out of the 2.4 lakh women beneficiaries, over 92 lakhs or 38% have been dropped from the beneficiary list because, well, they didn't qualify. The CAG report now has flagged financial irregularities triggering a fresh political storm. Was the Ladki Bahin scheme done without due diligence, or was this another classic case of an election sop that worked?
5: Over 92 lakh women dropped from Ladki Bahin Yojana in Maharashtra. That is roughly 38% of total beneficiaries of a scheme touted as the main reason for the BJP-led NDA's stunning landslide in the 2024 assembly elections. The impact is being felt on the ground. In Maruti Nagar slum in Akola, two neighbours with identical economic struggles are being treated entirely differently by the system.
6: घर के खर्च में थोड़ा आधार हुआ है, 1500 रुपए आ रहे हैं और मुझे रेगुलर आते हैं. मेरे कोई बंद वगैरह नहीं हुए हैं, चालू ही है मेरे पैसे. और मैं समझो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 1500 रुपए दिए हैं, तो उससे मेरे घर के हालात में कुछ सुधार हो सकता है. अभी 1500 में तो 2100 मिल जाए तो अच्छी बात है ना, इसलिए चाहते हैं हम कि 2100 मिल जाए. क्योंकि सरकार ने तो तब वादा किया था कि 2100 हम करेंगी, तो अभी सरकार ने कुछ करने को ना.
7: अब तक आ रहे थे लेकिन 3 महीने हो गए पैसे नहीं आ रहे मेरे को. केवाईसी तो मैंने किए हुए, केवाईसी किए सब किए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे क्या पता. उनका मतदान वगैरह था तो तब बोल रहे थे कि हम सबको देंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं. हाँ, हम तो गरीब है ना, हमको तो मिलना चाहिए ना.
5: Even as public anger boils over, the CAG has dropped a bombshell. Its audit reveals that the government overspent 3,541 crore rupees beyond its sanctioned budget. Worse, it parked an astonishing 15,586 crore rupees in virtual personal deposit accounts without any immediate need, purely violating budgetary discipline. The opposition is now pulling no punches.
8: आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से 2,70,00,000 लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए. इसका मतलब अगर 2,70,00,000 लोगों को आप अलग करोगे, वोट का अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा भुकना इनका धंधा है.
5: The ruling coalition is in complete damage control mode.
9: हे त्या ठिकाणी ई केवायसी मध्ये पडून आलं अशी साधारणपणे एक 14-15 लाखाची त्या ठिकाणी संख्या आहे. कोणतरी वाहन

0: So, as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place? Because
1: I
0: you
1: will
0: didn't really
1: tell
0: say
1: people
0: much
1: that
0: on
1: please
0: temple
1: be
0: management.
1: careful.
0: Okay.
1: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a लूट मची है मंदिर में, अब मैं लूट मचा दी है, लूट मत, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था. लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को, एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था. लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे. लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस. So that's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. And not error, it's a human greed of few individuals.
2: मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद. मसूद साहब, आपने फिर एक बयान दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार खुद गठबंधन की मांग कर रही है, दरकार है उनको, और जो जीत मिली 2024 की वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली, इसमें कोई ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं समाजवादी पार्टी का?
3: नहीं तो नतीजे हैं ना. 2022 में क्या था? 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए. बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे. अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे, आप उनको पूरा पोसते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ नजर समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी. और अगर कोई बोल रहा है तो
2: मुसलमान के आपने जिक्र किया, उन्होंने आपने नेताओं के नाम गिनाए आजम खान से तमाम लोगों के, और कहा कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर.
3: खत्म हो जी चुकी है, खत्म कर दिया गया. अब बचाऊं मैं, अब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि सब मिलकर के सबको सबको खत्म करेंगे, कि मुसलमान की मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बंद कर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे. भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया, कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं. और अगर हम बोलते हैं तो हमारे हमारे पीछे आप लगा देते हो. हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे?
2: आप इतने तीखे बयान दे रहे हैं. गठबंधन गठबंधन होगा आने वाले चुनावों में?
3: देखिए गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ. मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस की बात करूंगा. मेरा मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मुझे जो आदेश देंगे मैं वो मानूंगा. मेरा मेरा और कोई इससे सरोकार नहीं है.
2: वो तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपने हमें सीटें भी नहीं दी, आपने अखिलेश वकिलेश कह के आपके नेता ने जिक्र भी किया.
3: इसके इसके
2: बात तो खैर सच बात है ना.
3: नहीं तो हम मध्य प्रदेश में इनका क्या था? मध्य प्रदेश में क्या था?
2: अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ताकत आपकी बराबर की ताकत है और बराबर आपको बराबर का हुकूक चाहिए.
3: नहीं तो चाहिए ना, कैसे नहीं चाहिए भाई. हमने 2024 में दिखा तो दिया आपको, 2024 में आपको 37 सीटें जितवाई हमने, जितवाया ना. आप ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना, आप सरकार बना ली होती इतनी सीट के ऊपर. तो

0: financial irregularities triggering a fresh political storm. Was the Latki Bahin scheme done without due diligence, or was this another classic case of an election sop that worked?
1: Over 92 lakh women dropped from Ladki Bahin Yojana in Maharashtra. That is roughly 38% of total beneficiaries of a scheme touted as the main reason for the BJP-led NDA's stunning landslide in the 2024 assembly elections. The impact is being felt on the ground. In Maruti Nagar slum in Akola, two neighbours with identical economic struggles are being treated entirely differently by the system.
2: घर के खर्च में थोड़ा आधार हुआ है 1500 रुपए आ रहे हैं और मुझे रेगुलर आते हैं मेरे कोई बंद वगैरह नहीं हुए हैं चालू ही है मेरे पैसे और मैं समझो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 1500 रुपए दिए हैं तो उससे मेरे घर के हालात में कुछ सुधार हो सकता है अभी 1500 में तो 2100 मिल जाए तो अच्छी बात है ना इसलिए चाहते हैं हम कि 2100 मिल जाए क्योंकि सरकार ने तो तब वादा किया था कि 2100 हम करेंगे तो अभी सरकार ने कुछ करने को ना
3: अब तक आ रहे थे लेकिन 3 महीने हो गए पैसे नहीं आ रहे मेरे को हाँ केवाईसी तो मैंने किए हुए हाँ केवाईसी की सब की लेकिन क्यों नहीं आ रहे क्या पता उनका मतदान वगैरह था तो तब बोल रहे थे कि हम सबको देंगे किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हाँ हम तो गरीब है ना हमको तो मिलना चाहिए ना
1: इवन एज पब्लिक एंगर बॉइल्स ओवर द सीएजी हैज ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल. Its audit reveals that the government overspent 3,541 crore rupees beyond its sanctioned budget. Worse, it parked an astonishing 15,586 crore rupees in virtual personal deposit accounts without any immediate need, purely violating budgetary discipline. The opposition is now pulling no punches.
4: आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से 2,70,00,000 लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए इसका मतलब अगर 2,70,00,000 लोगों को आप अलग करोगे वोट का अलग करोगे तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर और पीठ पे चुरा बुकना इनका धंधा है.
1: The ruling coalition is in complete damage control mode.
5: हे त्या ठिकाणी ई केवायसी मध्ये पदवीन आलं अशी साधारणपणे एक 14-15 लाखाची त्या ठिकाणी संख्या आहे पण तरी वाहनं त्यांच्या नावाने असल्यामुळे असा काही 4.5-5 लाखाचा डेटा आहे. टोटल रजिस्ट्रेशन 2,63,00,000 होतं त्याच्यातले कदाचित म्हणजे त्याची नोंद धरून हा कदाचित हा डेटा येत असेल पण साधारणपणे आत्ताच्या घडीला आपण 1,67,00,000 ते 1,70,00,000 सुमारामध्ये हा जो आहे तो डेटा पूर्ण ई केवायसी ची प्रक्रिया केल्याच्या नंतर हा त्या ठिकाणी आपल्याकडे आहे.
6: द महाराष्ट्रज मोस्ट पॉप्युलर लाडली बहन स्कीम स्टँड ॲट अ व्हेरी क्रिटिकल जंक्शन. द गव्हर्नमेंट कॉल्स इट अ नेसेसरी क्लीन अप फॉर द सिस्टम व्हाइल द ऑपोजिशन लेबल्स इट ॲज अ प्री इलेक्शन ब्राइब एक्सपोज्ड बाय सीएजी. वेदर दिस रिमेन्स अ जेन्युइन एफर्ट टू एम्पॉवर पुअर वुमेन or it collapses under the bureaucratic chaos is what the voters are watching very closely. With camera person Sachin Sawant, myself Ritvik Bhalekar for India Today, Mumbai.
0: So the Ladki Bahin scheme and schemes like that now coming under the scanner. Is it time to stop election year cash handouts? These poll freebies, are they acts of bribing voters? Joining me now on My Face Off, Shaina NC, National Spokesperson of the Shiv Sena, and Clyde Crasto, National Spokesperson, Secretary, NCP, Sharad Pawar. To you, Shaina NC, when I look at what the CAG report says, it effectively flags out excess expenditure, parking of thousands of crores in fake deposit accounts, and deficiencies in the financial management of this scheme that was touted as a flagship scheme that won you an election. Now you've reduced the beneficiaries by 38%. Effectively, you will be accused of having put in a scheme without due diligence simply because you wanted to win an election in 2020.

0: So, as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place? Because
1: I
0: you're
1: will
0: doing
1: tell
0: pretty same
1: people
0: much
1: that
0: in
1: please
0: temple
1: be
0: management.
1: careful.
0: Okay.
1: Please get people who are honest. I will say that get people who are who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very important place. I'll say that. My only issue is that you not you, people are making it out into some kind of a लूट मची है मंदिर में, अब मैं लूट मचा दी है, लूट मत, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था. लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को, एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था. लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे. लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस. That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very minor thing and a human error in the, not error, it's a human greed of few individuals.
2: मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद. मसूद साहब, आपने फिर एक बयान दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार खुद गठबंधन की मांग कर रही है, दरकार है उनको, और जो जीत मिली 2024 की वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली, इसमें कोई ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं समाजवादी पार्टी का?
3: नहीं तो नतीजे हैं ना, 2022 में क्या था? 2022 में तो सरकार बना रहे थे आप, तब क्या था? अगर आप गंभीर हैं कि सरकार आपको बनानी है, अगर आप गंभीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो इसको फाइनल करिए. बार बार बार आप बोल देते हो हम गठबंधन गठबंधन गठबंधन में क्या कर रहे हो आप? आप हमारे जैसे बोलते हुए आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे. अपने छोटे छोटे छोटे छोटे नेताओं को मेरे पीछे लगा देंगे, वो मेरे खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे, आप उनको पूरा पोसते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ नजर समझ में आता है ना कि मुसलमान के इशू के ऊपर आपकी खामोशी. और अगर कोई बोल रहा है तो
2: मुसलमान के आपने जिक्र किया, उन्होंने आपने नेताओं के नाम गिनाए आजम खान से तमाम लोगों के, और कहा कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर.
3: खत्म हो चुकी है, खत्म कर दिया गया, अब बचाऊं मैं? अब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि सब मिलकर के सबको सबको खत्म करेंगे कि मुसलमान की मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक बंद कर रह जाए, कोई मुसलमान की बोलने वाला ना बचे. भाई मैं इतना क्या, मुझे बताइए, मंदिर मस्जिदों के बुलडोजर चलने पर कोई बोलता है? मदरसे तोड़ दिए गए उसके ऊपर कोई बोलता है? पुरानी पुरानी कदीमी दरगाहों को खत्म कर दिया गया, कोई बोला है? एक लफ्ज आपके मुंह से निकलता नहीं. और अगर हम बोलते हैं तो हमारे हमारे पीछे आप लगा देते हो. हम बीजेपी से निपटे कि आपसे निपटे?
2: आप इतने तीखे बयान दे रहे हैं. गठबंधन गठबंधन होगा आने वाले चुनावों में?
3: देखिए गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ. मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस की बात करूंगा. मेरा मेरा नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मुझे जो आदेश देंगे मैं वो मानूंगा. मेरा मेरा और कोई इससे सरोकार नहीं है.
2: वो तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपने हमें सीटें भी नहीं दी, आपने अखिलेश वकिलेश क्या क्या आपके नेता ने जिक्र भी किया.
3: इसके इसके
2: बात तो खैर सच बात है ना.
3: नहीं तो हम मध्य प्रदेश में इनका क्या था? मध्य प्रदेश में क्या था?
2: तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ताकत आपकी बराबर की ताकत है और बराबर आपको बराबर का हुकूक चाहिए.
3: नहीं तो चाहिए ना, कैसे नहीं चाहिए भाई? हमने 2024 में दिखा तो दिया आपको, 2024 में आपको 37 सीटें जितवाई हमने, जितवाया ना. आप ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना, आप सरकार बना ली होती इतनी सीट के ऊपर. तो